ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं ना चाहूं

सड़कों पर चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर निकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चेहरे पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू।

मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, तभी फ्लोर पे तेरी बेट में हूँ खड़ा। ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के वगा।